0: 还有花之旅索努 FM 出发FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य फिल्म स्टूडियो टाइम
2: 6 PM
3: डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने FM 101.2 MHz
2: तथा ध्वरामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: और प्रिंट मुझे तो रोकम सवारी साधन को नंबर एक सम्बन्धी सूचना आदरणीय श्री अग्रही महानुभावर तपो सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाऊन पड़ने सवारी कर नवीकरण वस्तु लगायत अन्य कर संबंधी वितरण हेन का संबंधित यातायात कार्यालय में गए कर प्रिंट मांग बैंक भोक्षर करना अगि सवारी कर तथा वस्तु एक तथा कर बुझाए पश प्राप्त होने बीमा आपू बुझाई कर को रकम आपू सवारी नंबर एक सूचना मार्फत अनुरोध
1: कर सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय।

0: उज्जवल एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: एएम बिहारको 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: 모두 불확실한 여러분과 이사회의 대신 대체로 함으로 퍼지도록 하이.
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जिंदगी से जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भैर निर्माण कार्य क्रम में माथिलो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहे तल्लो फेरा साधन क्षेत्र में नास्पात काटने गाई बस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत करने संपूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारण सावधानी अपनाउन हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। क्षेत्र में अनावश्यक रूप में नजानुहोस् र आफ्ना बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राखिदियोस्। सुनिल जिम्बेसी उपभोक्ता समिति सुनिखुम्बु। पक्षीगढ़ा में बढ़ना होने संबंधी सोलुखुम्बु बहुमुखी कैंपस को सूचना। विगत 35 वर्षदेखि उच्च शिक्षा को क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान संचालन और व्यवस्थापन करते आईरिक साथ योग्य दक्ष एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा अध्यापन भईरिक सोलुखुम्बु बहुमुखी कैंपस में एसई शैक्षिक सत्र 2083 कक्षा 11 में भर्ना भईरिक सबैलाई एसई सूचना मार्फत जानकारी कराइन। भर्ना कार्यक्रम में हुने मिति भर्ना म्याद यही सेट 17 गति देखि असार 15 गति सम्म कक्षा संचालन 2083 साल असार 16 गति देखि रजिस्ट्रेशन फार्म भर्ने म्याद 2083 साल असोज 20 गति सम्म पढ़ाई हुने समूहहरू कम्प्यूटर साइंस समूह कानून समूह व्यवस्थापन समूह मानविकी समूह शिक्षा शास्त्र समूह कानून समूह में 30 जना र कम्प्यूटर साइंस समूह में 40 जना मात्र भर्ना लिनेछ। थप जानकारी को लागि सम्पर्क

सूचना सूचना सूचना सुरुङ झील बेसी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुङ क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य क्रम में माथिल्लो सुरुङबाट ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो फेरा साधन क्षेत्र में घाँसपात काट्न गाई बस्तु चराउन तथा आवत जावत

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चेतना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भर पर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: उखलढुङ्गा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विस सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: उखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाङ उखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888022 र 9842880300

0: सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क
1: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँमा पायल्स फिस्टुला फिसर लगायतका रोगहरूको दैनिक विशेषज्ञद्वारा परीक्षण परामर्श तथा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
2: विशेषज्ञ सेवाहरू निशुल्क शल्यक्रिया सेवा अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकद्वारा उपचार छाड़ सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को सुविधा दैनिक ओपीडी तथा शल्यक्रिया सेवा
1: रोग लुकाएर नराखौ समयमै परीक्षण गरौ।
2: थप जानकारी का लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँ फोन 01-4110-6690
0: स्वस्थ जीवन का लागि आयुर्वेद अपनाओ।
3: क्लासिक टेक को 16th एनिवर्सरी अफर जतिमा चाहियो त्यतिमा पायो बजेट र प्याकेज तपाईँकै रोजाइको अब इन्टरनेट टिभी र वाइफाई 6 राउटर पनि त्यतिमै पाइन्छ। क्लासिक टेक को कुनै पनि प्लान खरिदमा हरेक हप्ता 3 जनालाई 3 महिना इन्टरनेट बोनस र मासिक 1 जनालाई ₹12,000 को इन्टरनेट बोनस सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक जतिमा चाहियो त्यतिमा पाइयो।
4: महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड।

सूचना सुरुंग जुन बेसी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य क्रम में माथिल्लो सुरुंगबाट ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो फेरा प्रादुन क्षेत्र में नस्पात काट्न गाई वस्तु चलाउन तथा आवत जावत गर्ने संपूर्ण स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपना

0: 政府を参考にしてください。
1: सुरुंग बेसी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भैर निर्माण कार्य का क्रम में माथुले सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहता तल्लो खेरा प्रादन क्षेत्र में घासपात काटना गाई वस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत करने संपूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारण सावधानी अपनाउन होने इसी सूचना मार्फत अनुरोध कर अनावश्यक रूप में न जानु आपका बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखिदेश सुनील जुलबेसी उपभोक्ता समिति यौन हिंसाबाट बचाउ र बचाउ यौनजन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो। बालबालिका यौनजन्य हिंसाको जोखिममा हुन सक्छन्। हिंसा समिति असन्तोष साथीलाई परिचित नदिँदा र जोसुकीबाट हुन सक्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं। बालबालिकाको चालचलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ। त्यस्तो पाइए उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं। बालबालिकासँग नियमित सम्वाद पनि गरौं। आन्तरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में

कहिले कल कल कल कल बगछो खोली को चाल जस्तो कहिले बगछो जे बिमारी नरही को छाल जस्तो कहिले कल कल कल कल बगछो खोली को चाल जस्तो कहिले बगछो जे बिमारी नरही।

0: एंड सप्लायर्स सोलू दुतकुंडा नगर पालिका वड़ा नंबर 5 सल्लेरी सोलू खुम्बू। यहां बिजुली का संपूर्ण सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में पाने का साथ ही नया तथा पुराना सामान मरमत कर जानकारी का लगी संपर्क नंबर कुल नारायण श्रेष्ठ 97 63 00 57 84 विवेक श्रेष्ठ 98 62 82 00 00 सुनो धुपकुंडा नगर पालिका 5 सोलिरी सुनो खुम्बो। सड़क प्रयोग गर्दा ध्यान दिउ, सड़क सीमा अतिक्रमण नगरौ, सड़क सीमामा अस्थायी एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरौ, सड़कको नाली ठल तथा पानी निकास बन्द हुन नदिउ, सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गरौं, सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौं, सवारी साधुमा झुन्डिएर वा छतमा बसेर यात्रा नगरौं, सड़कको क्षमता भन्दा बढ़ी भाग प्रयोग नगरौं, जेब्रा क्रसिङबाट माथि बाटो काट्ने गरौं, सड़कको तत्काल मर्मतमार गर्ने गरौं, यात्राको क्रममा कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: 5 PM साँझको 5 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु।

0: सोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: 6 PM साढ़े तो 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Suri FM. Studio time.
0: 7 p.m. Start to pull start with it.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंडू

0: बोलो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संचित सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 PM रात को 8 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुम नगरपालिका 5 सोलु कुम्बू।